और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जो है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जो है।

भी मेराम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए, और अगर आपकी चान कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है क

0: सोया
1: और परमान श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद फिल्म का नाम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं फिल्म के नाम है कुर्बानी ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों और हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं कैसे

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

0: और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों
1: गाने को है
0: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाइश श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं और आओ मिल्क सुना जाए। मूवी का नाम है आदमी।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारों। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करती है। नैतिक गिल्ला था जी, परमाश श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगी। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर, अब भी या महिया। अब देखो भैया क्या है,

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे।

में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने अपने मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर के दिया हुआ सब कुछ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थ को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह योग्य उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की यह बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, पहले जो के साथ साझा करते हैं तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी उचित। मैंने सपने देखे हैं, उसे मैं पूरा कर लूं, उसके बाद ही वह विवाह के बारे में सोचूं। फिर उसके माता पिता ने समझाया कि पुत्र शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही होता है, क्योंकि शादी के बच्चा पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृण होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारे जिंदगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपनी माता पिता की इन बातों को सुना तो वह कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए, जब तुम्हें कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव में लड़की पसंद करने चले गए। जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा लिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़के के माता पिता अपने पुत्र की विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लग गए। लड़के के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत प्रसन्न था, साथ में लड़के के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वह दंपति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़के के माता पिता थे उनके उम्र ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर लड़के के माता पिता ने अपने लड़के और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा आज जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे, इसलिए इन बात को बड़े ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हमारी इन बातों को कभी मत भूलना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दूसरों के लिए तकलीफ पहुंचे, और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों को मदद ही करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता न करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांत पर ही चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसकी माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था और जैसा अक्सर देखा ही उनका स्वभाव हो गया था। लड़के के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे।
उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को रास नहीं आता था और वे नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी के कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उसे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारी माता पिता की ऐसे ही हरकत रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो वह लड़के से कहते हैं कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किसी तरह लड़का दोनों को समझाता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे, कुछ समय तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर के इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपनी सास ससुर की इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वह लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आता हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। लड़की के मुख से यह बातें सुनकर पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते, उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वे ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा, इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपनी ससुराल से यह निर्णय करके आई हूँ कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री की यह वचन सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसकी माता पिता का घर है, उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुर ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ अपने ससुराल में, दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। भी लड़की कहने लगी कि आपकी बातों से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करूं, वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी, मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं, हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती हैं। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी, मैं भला उन्हें भूखा क्यों मरूंगी। जब अपनी बेटी की यह बातें वह पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं।
अगले दिन ही लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते। फिर लड़की के माता पिता इस बात को दोनों के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिनके एक हाथ में कमंडल था और उनके बड़े बाल बिल्कुल सफेद और लंबीदार रही थी और मुख पर एक अलग ही तेज थी। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वह एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आभा थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र कोई परेशानी है क्या? तब लड़की के पिता कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर साधु महाराज कहने लगे, बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई जरूर समाधान कर दूंगा। वह लड़की के पिता कहने लगा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैं अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में करी थी, जिसे घर में मैंने अपनी बेटी के रिश्ता किया था। वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वह तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई भी पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन भला कैसे कतवा सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सिद्ध सन्यासी कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो तू मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मैंने बताई बातें उनकी समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में यह चार बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी यह दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यास के इन बातों को सुना तो वे प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल दिए। जब समधी के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब लड़की के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपके हम सभी बात मान लिए तैयार है, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे करवाना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और यह सब जानते भी वे हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी चार बातें माननी होगी। यदि तुमने यह चार बातें मेरी मान ली, तुमने अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए चार बातें बता रहा हूं,
जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपने वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले एक हर बार सोच लेनी चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है या फिर उन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाते हैं तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वह बोलता तो ठीक है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलता है। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हम लोगों से बातें करें। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज के इस बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बातें हैं वह भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वह उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती, और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं, जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपने काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वह हमारे सामने आ जाए, कभी नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहुत हो आपकी बातों को सुनते ही नहीं। यह गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाजों को सुन भी पा रही है या नहीं, और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है। कि दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर की रस्ती में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को छक्का और भोजन छक ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लग गए कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लग गए कि भोजन में यह कमी है, वह कमी है, सब्जी ऐसी बनी नहीं है, वैसी नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे
आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था? बुरा लगता था कि आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें यह सामग्री कम है, बस सामग्री कम है। आपको तभी बुरा लगता था। देखिए, चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बतानी चाहिए कि बेटी देखो यह कमी है, आगे से ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना, प्यार से कहिए। ऐसा सुनने में बहुत ही प्रसन्न रहेंगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमेशा उसकी खाने से नई कमियां ढूंढते रहते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा चिढ़ते रहते हो। आपकी ऐसा करने से घर में कलह ही बनती है, इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि भोजन यदि बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से को बता देना है, ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की यह सारी बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, गुरुदेव इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया वह चौथी बात भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं चौथी बात भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद वह कहते हैं कि वह चौथी बात है कि अपनी परिवार के हालातों को के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वह खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वह आपका कहना नहीं मानती, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों नहीं है, क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय तो वो लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं और वही लोग एक की चार बातें बनाकर तुम्हारे कही हुई बातों को तुम्हारे बहू या बेटा से कहते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिसे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इसके घर की बात उसके घर में कहना, इसकी समस्या उससे कहना, बढ़ चढ़ के उस बातों को बोलना। अधिकतर लोग तो आपके सामने आपसे हमदर्दी जताने के बहाना नाटक करेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी चुगली इधर उधर करेंगे। इससे आपके घर में झगड़े सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाते हैं, समस्या और भी बढ़ जाती है। आपकी बेटे आपकी बहू से, बेटे से, माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, पत्नी से, पति और सास के बारे में चुगली करेंगे, भड़का जाएंगे, कहेंगे कि आपकी सास ने ये कहा कि पति ने ये कहा। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाती है। यदि आप बहू और बेटा के बारे में खराब बात कहेंगे और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहू की नजरों में गिर जाते हैं। दूसरों को अपनी घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्या बरेट जाएंगे। आपका ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही वह समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारी माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारी माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है बुढ़ापे में, तुम लोग अपनी माता पिता को परेशानी देते हो, पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाना। इसीलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो उसे बाहर के लोगों के साथ कभी सांझा मत करो, नहीं तो वे लोग उस मौके के फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुख झेलो। ग, जब दोनों पति पत्नी उन सिद्ध सन्यासी की बात सुनते हैं, हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, पूरे पैसे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने बहू के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दी है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है।
इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग घर की बातों को पूरी गांव में फैलाओगा तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आप दुखी रहोगे। इसीलिए आज से मेरा कहना मानो कि अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों दूसरे के सामने भी मत साझा करना, और जो चार बातें मैंने तुम्हें बताई है उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बूढ़ा है इन चार बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। पीछे से सार बातें उनकी बेटा और बहू सुन रहे होते हैं। यह चार बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वह सिद्ध साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे या ध्यान रहे, उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उसे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जबान बच्चों को यह समझना चाहिए कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी के उपेक्षा में दिमाग तो कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि यह बूढ़े लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वह हमेशा ही खुद परेशान रहता है और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुरा परे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कहती है, आपको मार दी है या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचने वाली बात करती है या आपसे झगड़ा करने लग गए हैं या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो इस पर आप लोगों को छेड़ना नहीं है बल्कि उनकी बातों को सुन लेना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले आपको उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है, प्राचीन समय की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है, वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं, लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है, यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं
और उसे कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण हमारे भीतर हैं, तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपना कर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है, उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख ले तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया, वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीख कर हम वह गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उसे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, जिस कारण हम फिर वह गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साथ लिया, समय के अनुरूप अपने आप को डाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसे कोई बात उचित जीने का मंत्र जान लिया, समय एक अमूल्य धन है, समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो यह बाकी चीजें हमारे किसी काम नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करें लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, कोई राजा हो या कोई फकीर हो। समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता है और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति
किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वह गिनता रहेगा, इसीलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें, कम बोलने से का मतलब ये है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं, वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी बात के बक बक करते रहते हैं, वह सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है, वह किसी नहीं लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है, और फिर वह इसी बहस में वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे ही बोलना चाहिए था, और फिर वह उसके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, जितना उचित होता है, वह कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है, जैसे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन का भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्र को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं, और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं, और फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरों की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वही मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि वह एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं।
और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य से निर्धार कर लेते हैं और फिर नतीजा यह होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए वह कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं है। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसने तो यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूं तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती हैं। अपनी तुलना दूसरों से कर वह फिर दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता है कि उसमें क्या गुण है। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं, किसी भी दूसरे के भरोसे वह नहीं बैठते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वह निश्चित रहते हैं। वही मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं, वह अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु नवान लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि कि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।
फिर गुरु दसवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांच हैं, परख हैं, वह सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है, वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बड़ा दूर रहता है, इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वह मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं, वह हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल जो है वह कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बीतते हैं और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि सफलता कुछ ही नहीं होती है बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं वह असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जैसे से वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाठ तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो कोई हूं नहीं, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कह हैं कि राजा साहब बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहवा और वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा,
इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें यह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है। मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वह आदमी मोहरे पाने के लिए

मैंने सुनी हुई है, दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, यह बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह यहाँ के राजा थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था और आपके परदादा ने मेरे दादा से 2000 सोने की मोहरे उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कह करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरे लौटा देते तो हम कभी करीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए, फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वह बात सुनी ही नहीं, लेकिन आपने यह कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते हैं कि यह बात मैंने नहीं सुनी तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढंडोरा पिटवा था कि कोई नई बात मुझे बताओ, और यदि राजा यह कह दे कि यह बात तो मैंने पहले से सुन रखी है तो फिर तो 2000 मोहरे उसे वापस लौटा आनी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भाग दौड़ मच गई, सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा, यदि वह अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोगल

0: घंटे वह अपने काम को टालते नहीं है। आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वह होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको सिर्फ चाहता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा। उस गलती को दोबारा से कभी दोहरा हंगा नहीं कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान नहीं, वह मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर जो होता है कि वह कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वह उत्तेजना के वश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो वह बैठकर शांति से धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है, यह भी देखता है इसका नुकसान क्या होगा और उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वह होता है कि वह अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वह बातों की वजह से फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वह उस परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि कि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। पांचवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है, यह चाणक्य ने भी कहा है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वह यह कि यदि वह कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह काम शुरू करने से पहले ही ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढंडोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नजर में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं, तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि यह आदमी कितना शांत है। अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वह होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता।
1: मित्रों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। और आगे मित्रों, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह ईश्वर के दिल तक जाती है, ये मत भूलिए।

मित्रों, हम लोग जब किसी शादी की रिसेप्शन में जाते हैं तो पैसों का एक लिफाफा जरूर देते हैं। अगर कार्ड पे नो गिफ्ट प्लीज या खेन एम्फलोप नास्तुग्रिफ लिखा भी हो तो भी हम लिफाफा देने जरूरी समझते हैं। पर जब ध्यान करना मित्रों, पर जब अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और उस वक्त जब हम उसे देखने जाते हैं तो कोई लिफाफा हम नहीं ले जाते हैं, जबकि उस वक्त मरीज के घर वालों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, क्या हम सब मिलकर ये नया रिवाज, नया प्रथा नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर आप भी इस बात से सहमत है तो ये संदेश को आप जरूर औरों तक पहुंचाइए। प्लीज जरूर औरों तक पहुंचाइए।

साथियों, इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मित्रों, इस बात को ठीक से समझना और कोशिश करो अपने जीवन में उतारने के लिए।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

ठीक नहीं है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर से आए हैं तो उन्हें फन हार्ट वेलकम एंड फाइन वैकेंसी टू गवेंस। ये ऐसा देश है जहां सुंदरता जो देखने के लिए दुनिया से हर एक प्रांत से लोग यहां आते हैं। सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहां कुंस एंड कल्चर के लिए लोग यहां तक आते हैं, पर यहां देखने के लिए काफी चीजें हैं, काफी जगहें हैं। और ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार और कौन कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है, हालांकि अलग अलग शहरों में, पर फिर भी रोटरडम, देन हाग, अलमेर, आरनहेम, आम्स्टरडम, फ्लारनेगर, क्रिम्पन ऑन द एसल, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें। अगर मंदिर का दर्शन करना है, भगवान को दर्शन करना है, तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है। देखा जाए कि देन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है, जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को, देन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से सूतमेर में मंगलवार को 6 बजे से हल्फ नहीं खतक रात्रि का कार्यक्रम, और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे, तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बेल्ट में है, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को। रोटरडम में भी राम मंदिर, इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है। सुनो लो, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे।

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नीहतीन ससन सईफ अंतख में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

जी के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ति मेहुल के आवास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. श्रीमान खेमराज जी ने यह संदेश को भेजे। अन स्क्राइबर फिलोसोफ जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महामंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई जी।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। और अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

स्वस्थ रहे और मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।

सुनो लो, मैं हूँ आपका सेवक संजय। और कुछ समय तक मैं आपके साथ व्यतीत रहेंगे। कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जो दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा आप सुन सकते हैं। हमारी हिंदुस्तानी की आवाज़।

कहते भी है कि जिसका उदय होना निश्रित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है।

आज एक ऐसा दिन बनाइए कि कोई आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, ऐसा दिन जिंदगी में रोज आए।

ये किनारा ही के खोज में हम सभी लगे हुए हैं, पर किनारा कैसे हम पहुंचेंगे? पहले तो हम नाव में दोनों पांव अपने रखे, क्योंकि हम सभी भगवान को पाना चाहते हो, पर पकड़े हुए अभिमान से लाचार है। और ये भी संदेश प्रदीप जी ने भेजे है उत्तम नगर से। प्रदीप जी के ये संदेश है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

जी भी एक और संदेश को और भेजे हैं, जिसमें लिखा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। जैसे कहा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत ये है कि मन को प्रसन्न रखने सब दुख दूर हो जाएगा।

आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, जिस पर सुनील जी भी ये संदेश भी हमारे लिए भेज दिया कि मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

सुनाल, इस पर ईश्वर जी भी हमारे लिए एक संदेश भेजा। और भाई ईश्वर आपके संदेश कोशिश करेंगे रखने के लिए। संदेश जो ऐसा है कि सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए। यह संदेश जो ईश्वर जी हमारे लिए भेजे।

और सुनने वालों, भाई ईश्वर जी का दूसरा संदेश ये है सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

बिल्कुल सच कहे भाई ईश्वर ने। संदेश जो कि सत्य की भूख सबको है, हम सभी सच्चाई सुनने को इच्छा करते हैं। और भाई ईश्वर कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

की जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाता है।

सुनने वालों, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी रखे, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है।

आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और संदेश जो ईश्वर जी के ओर से जो भारत मोहन गार्डन से जुड़े हुए और हमारे पास संदेश को भेजते रहते हैं, तो ईश्वर जी के ओर से एक और संदेश है, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लग जाते हैं।

अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छे सामान अच्छे इंसान नहीं ला सकता है।

दोस्तों, ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो है। ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है।

रब ने बना दी जोड़ी। रूप कुमार की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। कहा जाता है कि नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।

क्या सुंदर संदेश। कहते कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे। क्या खूब संदेश भेजा भाई ईश्वर ने कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं।

कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों के गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला होने लगता है।

कलम कबीर सिंह, ये गीत जो गाए हैं अरिजीत सिंह, उनके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने।

खुद संदेश भी था। ज्यादा लगाव रखना है तो अपना करियर से रखे, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है मगर अपना करियर जो है ना आपका हमेशा साथ देता है। सुनने वालों, यहां तक हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार। मैं आपका सेवक संजय और आपसे विदा लेते हैं, और किसी ने अच्छे कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals,

जो लिया तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन सं

यीशुदास जी की आवाज में, यीशुदास जी की आवाज में फिल्म का नाम एक बार कहो, फिल्म का नाम एक बार कहो। नेखन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया। म्यूजिक

मौन यानी कि चुप और मुस्कान यानी कि खलिमलाख। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज दैट फर्शकिल? मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान से, एक मीठी मुस्कान से कई, एक मीठी मुस्कान से

0: क्या है
1: ये दुनिया अगर मिल जाए तो आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। फिल्म प्यासा से ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में। पत्थर की है दुनिया, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तन्हा तो चांद भी है, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर चांद का दर्द, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती।

जिंदगी क्या है, रफी साहब की आवाज में दिल दिल को टटोल देते हैं ये सुंदर सुंदर गीत। माय गॉड, इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान

ज़िंदगी से ये सवाल किया जाता है कि ये बता दे मुझे ज़िंदगी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आवाज़ में। इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लगन यानी कि है दून है प्रोबेर। लगन हर इंसान को हर इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने।

क्या आवाज है आशा भोसले जी के। जी हाँ, आशा भोसले जी के आवार्थ में ये दर्द भरा गीत आपके लिए पेश किया गया। फूल और पत्थर फिल्म का नाम। मेरी प्रार्थना को ऐसा स्वीकार करो मेरे प्रभु,

0: मीठा बोलना, मीठा बोलने और सभी को इज्जत करने के लिए।
1: Ook verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथों का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उसे सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हॉल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाला ही हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

बुलाए और मैं ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत संगीत यानी एक बहुत सुंदर संगीत चुनकर हम रखे हैं आप सभी के वास्ते, फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, वो हमसे खफा है।

श्रेय घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश की है इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

शानू के साथ में अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत याद आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका यज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे अब का यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

का यज्ञ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

0: तू ना आए तो आया तेरी याद, गली में आज चांद निकला। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी सखम से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन और उसके बाद मैं आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: अदवकातन का तौर आन दराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsrecht.

फ्रॉम द मूवी जहर से भी आप सुन रहे थे अदीफ असलम की आवाज़ में वो लम्हे वो बातें। गैंगस्टर है फिल्म का नाम, के आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है तू ही मेरी शब है।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी।

फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर शिप ही आप सुन रहे थे के की आवाज़ में तू ही मेरी शिप है। एक दिन तेरी राहों में फ्रॉम द मूवी नकाब से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे एक दिन तेरी राह में, फ्रॉम द मूवी नकाब से हमने पेश किए हैं। बाखुदा तुम्ही हो अतीफ असलम और अलका यग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।

0: अतीफ असलम और अलका यज्ञिक मिलकर आपको सुना रहे थे बाखुदा तुम ही हो। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और राजू सिंह आपको सुनाने वाले हैं ओ सोनियो।
1: थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।

अभी आप सुन रहे थे ओ सोनियो, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तारा रमपम से आप सुनेंगे हे शोना।

शान और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे हे शुना फ्रॉम द मूवी तारा रम्पम। रब ने बना दी जोड़ी है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ।

फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी अभी आप सुन रहे थे। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और सलाम नमस्ते है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे शान और गायत्री आयर की आवाज़ में। जी हाँ सुनने वालों, शान और गायत्री आयर की आवाज़ में आप सुनेंगे माय दिल गोस।

अब ये आप सुन रहे थे माय दिल गोस फ्रॉम द मूवी सलाम नमस्ते से हमने पेश किए हैं संजीव सरसा हम देखे नहीं सुनने वालों गीत का बोल है यू आर माय जान

अभी आप सुन रहे थे योर माय जान। इश्क हुआ कैसे हुआ, फ्रॉम द मूवी अजा निचले।

फ्रॉम द मूवी अजान नशले से अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में वादा रहा प्यार से प्यार का फ्रॉम द मूवी खाकी से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं अर्नब चक्रवर्ती के साथ में श्रेया घोषाल जी

प्यार से प्यार का अर्नब चक्रवर्ती के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोग को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरी राम राम नमस्कार, हुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम।

Een kogel trof HB in zijn linker onderbeen. Bolle het slachtoffer werd per ambulance. Bolle Chorwan ke dauraise. Maar Chorwan ulte dagi se oke bhaiya. Joroker Adamia ke gode me lagal hai. Aur batawe ke sakwa bolle onderzoek hoe hai bhai. Aur Chorwan ke piche na dauriye jai bhaiya. Tu apre dekhe Chorwa dagi se abhi gode me lagal hai. Bhai ante lag ja tab to ye admi mar jaat bhai. Aur chor ke ka hua tu jai ke jahal kaat ke. Aur dheere se bahre ghumat. तरी सोचो तो भैया तो चोर लोग के बातचीत ई होवे हैगा हमारे जनता एगो आदमी के नाम बा भाई ना भौजी वाला भाई भैया ये आदमीया के नाम बा जयन कल्लू मिसिर नाम के मुताबिक तो हिंदुस्तानी है सी नंदर तक यार रख भैया ई आदमीया का कर ले रहा एगो बड़का और खानी सासी में चोरी के काम कर ले रहा भैया द फोर्थ फॉर द मन वाज एर्दन एक्सटर्नल ऑपरेशन ब्रेक रहा बोले पुलिस एक मर्डर फुरते एक दिन चोरी करत रहा ओ तो भाई वरबे आले द्री खस्टोलन फुरतेकन मिल गए हैं और फालन इस दा द टू इधर फन टोटल खस्लोप सेंटर को फन ओ तो वाइस अब चोरी करके भाई वा स्लोप करत रहा और बतावे गए हैं एको नवा त्यो उता फेस चोरी कर ले रहा संतो दरप में तो फुर Take word later, okay, someone call car ke welgelegen straat me paise kwata me. और इकल्लू के सिपाही पक्कल से भैया त्यो उता पासो अनलाइज वेक में चोरी कर ले रहा फोर खयान दिव साल फन त्यो उता फॉक्सी और नेपाल स्ट्रैट में क्वाटा में तो अब एक सिपाही पकड़ी से सीफ ने दर तक यार के नाम एकर भाई नाम बा भाई भाई नाम बा भैया तू जाने फिस्टी केल के फिल्मों में भी भाई बोले है तो ये बात है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता अब देखो सैमसन का बोले है आंतरिकल साया खीन हैंडलिंग दी स्ट्रेट इज में द वेट एंड रीगल गिवन टू लोन जाने साया मिक्सन हाइटियन तो ओ मांगे ओ हैगा काबल एडवाइजर बनल है तो इरेमिया बोले बोले को प्रॉब्लम ना है हां Maskerde rovers slaan toe in appartementcomplex. Meerdere woningen leef geroof. Bij egona. Auro dheer ghar kasi roof kari se. Hiya appartement me bhai. Hiya se bhi admi jaat appartement huur karke rahe hain. To hiya bataye gaye hain. Yaha bataye gaye hain. Sipahi pakdi se roof over fall bhaile. Woning in braak raat ke. Tapai straat me. Ab belwarder weg me. Hua appartementen bhaiya complex hai ga. Volgens de aangever trapten de daders de achterdeur van een van de appartementen. De bewoner vluchtte samen met haar partner uit angst naar een andere ruimte nadat zij lawaai had gehoord. De indringers verlieten het appartement uiteindelijk zonder iets. Buiten te maken, or betaalde Diego 26-jarige onder schot gehouden. Daders maakte tijdens het beroven een rode iPhone. Oude toebehoort aan zijn vriendin. Vrouw raakte in paniek rende weg en kwam daarbij ter val. Volgens slachtoffer waren twee van de vier daders gewapend. Toen hamara minister bole he, bole choria, danko en roofwa bole bahut kamti hui ge he. De bole se thoro hoe he, bhaiya manor. तेरी काम करके दिखाओ सही फर्श दिखाओ तू ये बात है हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता तो यहां पर दिखाए गए हैगा तुलून जानो है मेलक सेंट्रल वाला आर्मिया के जानो तो डायरेक्टरवा डायरेक्टर हुआ है मेलक सेंट्रल के तुलन तुरिया जानो ना बंद रहा भैया और वो छूट गए है भाई फॉर्मालक डायरेक्टर और बोले हैगा मेलक सेंट्रल के बोले हैगा बवारिक फलिंग डायरेक्टर कमिश्नरस वाज फ्रस्ट्रेटेड और बोले फ्रेय फुट हो गए है और डायरेक्टर वेट इन द सामन मेड द अदर अंडर डायरेक्टर प्रेसिडेंट कमिश्नरस आंगहोदन फ्रॉड कलरा भैया एंटी करप्शन वेट के बारे में से बंद रहा बाकी उत्सव के सखवा दोरों चले हैं फॉल्कस यूसीएल ऑथोरिटी के बदेकन दा इनफ्राइट स्टेलिंग नीड दैट द स्ट्राफसाख इज बाइंड द फॉर्मालिटी डायरेक्टर ब्लेव verdachte in de lopende onderzoek het gerechtelijke te i doedwaa ketoria hai hamare pyare pyare janta tolon jano melak central ke doedwaa jo ne डायरेक्टर वो सब चोरी कर ले रहा तो स्मोकल कर ले रहा मतलब दुकान में और पैसा उस सबके जेब में जात रहा भैया ऐसे बात है

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गान, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और जो अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिलके सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

0: Ja, beste luisteraars.
1: कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। एक को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल देखकर लग रहा है द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहे ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र मैजिस्ट्री द किंग और हर मैजिस्ट्री द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव वेतन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप उसकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं, मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे छात्र यहां बैठे हैं। रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रहती, अपनी मिट्टी की खुशबू, त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुने और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं। हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस यहां बहुत पॉपुलर है। ऑन इन स्टेशन के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिली तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या अपने अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें पेस चाहिए। क्या चाहिए? फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत की युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। अपनी सीमाओं तक नहीं, भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। वही है एस्पिरेशंस अनलिमिटेड और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो। आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की। एक वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया, वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। हां, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा। दुनिया के सबसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं, वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबे टनल को सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है, उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है, ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रेवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है, साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014

2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में 1,25,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। साथियों, भारत चिप मेकिंग में सेमी कंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। अभी भारत में 12 सेमी कंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है। इनमें से 2 प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन
ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर

ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नेदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नेदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी। और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नेदरलैंड बनेगा। हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नेदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी

0: 100% भाजपा।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड के क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने

0: 있습니다.
1: 자, 다음 비냐 내장도로 या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी वेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम सभी को भाव अच्छा लगता है। जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है वैसे ही हॉकी में नीदरलैंड का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है। इस वर्ष को हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु है, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत के जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। मोदी के बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।

शाबाश महान गायक हमारे श्रीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार और बैठक गाना का एक महागुरु उस तालुकास्ता श्री रवि उदित राम जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक और महान गायक है। ये दोनों साथ एक ही जगह काम किए हैं और काफी दिनों तक भी साथ कितने प्रोग्राम दिए हैं हमारे सुरीनाम देश के लिए। और ये भी एक जबरदस्त इंटरनेशनल कलाकार है हमारे इस सुरीनाम देश का, जिस पे हमें नाम से गर्व है। उस्तादों का उस्ताद पंडित श्री क्रिस राम खेलावन के मधुर आवाज में आप सुनेंगे भारत की एक ब्रह्मचारी। इट्स लाइव रिकॉर्डिंग।

उस्ताद इंटरनेशनल कलाकार हमारे सुरिनाम देश का पंडित श्री राम खेलावन क्रिस जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान एक और महान कलाकार हमारे सुरिनाम देश और हॉलैंड देश का उस्तादों का उस्ताद और जबरदस्त महागुरु बैठक गाना का द ग्रेट रामदेव चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान।

0: ऐशिव स्तारुका उस्ताद बैठक गण का महा महा गुरु दिखड़ेत रामदेव चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का जो वर्ल्ड वाइड काफी नाम कमाया, वो सिर्फ ना गाना गाता था लेकिन नाटक भी और जबरदस्त खेलता था। तो नाटक कलाकार और लेखक कंपोजर गायक उस्ताद का उस्ताद जबरदस्त बैठक गाना का महा महा गुरु द ग्रेट हरीशिव बालक जी का ये बिल्कुल नया कबीर निर्गुण भजन जो बहुत ही दिन हुए जो गा चुके थे लेकिन अभी हम लोगों को मिला सुनने के। मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब।
1: चादर थी

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक, महान फनकार, हमारे श्रीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद श्री हरि शिव बालक जी। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का आईडीआर सीफ, जिसे हम प्यार से फ्रुईती फ्रो के नाम से भी जानते थे, उस्तादीन और बैठक गाना का एक जबरदस्त गुरु माता श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी, तेरी बोलिया सुने कोतवाल।

शाबाश शाबाश शाबाश। बैठक गाना का जबरदस्त उस्तादीन श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये प्रोग्राम लाइव आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया जा रहा है। एक महान गायक हमारे सूरीनाम देश का, मेरे ख्याल से द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्डन वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी का ये सुपरहिट सॉन्ग कि जो शीश तली पर धर ना सके।

महान गुरु द ग्रेट पंडित राम प्रसाद राम खेलाऊ जी। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप टून है यारो, साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत का, जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है देन हाँ शहर से। अगला बयान और साथ ही साथ पहला अध्याय का आखिरी सॉन्ग आप सुनेंगे हमारे सरनामी संगीत का, महान गाने वाली सुरिनाम देश हॉलैंडिस का द क्वीन ऑफ बैठ गाना बिजानवती चैतू की दर्दियों न जानी।

van Hindustani Radio Kakarikram, आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। Natuurlijk werkt ze boys and girls en bedankt hoor. Jo bhi radio ka kaam ho, khas farmai se zaruri khabre istihare. Aur agar aap ek vyapar ho, to apne vyapari ke baare mein zarur commercial banwa kar aur Fahun Hindustani radio ke madhyam se broadcast elan karana yaar. To ho sakta hai, kuch na kuch ho sakta hai. Ye baat main aap shrotaon ke इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायती से दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायती सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंडीज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेरेंस कंतूर उर फन मांडाग टोट फ्रेडाग फन 9 उर स्मोर्गंस टोट 5 उर स्मिरग्स ओप दे वोलगंडे टेलेफोननुमर्स कंतूर 070-365-2247 स्टूडियो 070-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Bent u nog geen lid van Vahun Hindustani Radio? Toch gezegd is bent u niet bieden kia jarahai. Kia bijdeld si deld Vahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banai. Aapko to dheer sare fayda hi fayda hai. Sabhi jankari bellen op 070-365-2247. Tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur smiddags. To aap bhi hum logo ka member bane aur roko bhi banaye. U bent van harte welkom. Wara ke mutabik ek dam badhte hai program ki taraf aur hamare dusra adhyay sarnami sangeet ka hamesha ki tarah kuch orchestra music सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक एक अति सुंदर बयान पहले भी मैं महान गायक हमारे सूरीनाम देश का द ग्रेट रायन नन्नन जी में द म्यूजिक फार्मेसी क्लास एक्स पहले भी मैं

0: मोहब्बत हो ना जाए म्यूजिक फरमासी गुड वाइब्स मिस्टर पे प्री फीट क्वाइकी मैंने पायल एनतिलक टुगेदर विद सूट पतात मिक्स म्यूजिक फरमासी नो मर्सी एक बार फिर नाथान दी मिलके सुनते हैं सुरिनाम देश का जबरदस्त म्यूजिक फरमासी नो मर्सी का बिल्कुल नया सॉन्ग
1: It is also the case of sexy ladies in a blazer. Who in the motion?

0: जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सप्रेम नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है, वीफी रेडियो, इंटरनेट रेडियो पर www.fahanfm.nl पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:02, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया बीरबल से, सुरेन भगवान दीन जी, भैया सुरेन बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है अपने तरफ से, यूसुफ के तरफ से, और मेरे सामने जो बैठा यूसुफ के बाजू में है श्रीमान मीनू भगवान दीन। जी हाँ, मीनू भगवान दीन, भैया सुरेन भगवान दीन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और डायरेक्टर की तरफ से और हम सब के तरफ से। भैया बीरबल, शुभ रात्रि। सोंदाख, जी हाँ सोंदाख सेफन 3 मार्च है। हाँ भैया ये सब ठीक है ना, सोंदाख सेफन 3 मार्च है और आप तत्पर हैं। जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी देश में होंगे, ईस्ट ऑफ वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, लेकिन फाहौन इज़ द बेस्ट। जहाँ भी होंगे फाहौन की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। आप सबके शुभ रात्रि, शुभ शाम, शुभ सुबह, शुभ प्रातः पेश किया जा रहा है, क्योंकि नहीं पता आप कार्यक्रम कहाँ से सुन रहे हो। जैसे मैंने कहा, सोंदाख सेफ 3 मार्च गीत गजल के कार्यक्रम हम सब पेश करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, भैया यूसुफ मेरे सामने बैठा हुआ, उसके बाजू में श्रीमान मीनू भगवान दीन। जी हाँ, ये एक नौजवान है, हम लोगों से नौजवान है बहरहाल, और कुछ दिन में हो सकता है कि मीनू भगवान दीन यहाँ माइक्रोफोन के सामने बैठे। अच्छा, वो तो अभी देखेंगे, लेकिन भैया यूसुफ कुछ आवाज सुना दे ब्रूर अपन।
1: Want we zitten op telefoon te wachten. Er is een telefoon al binnen. Dus alle 2 lijnen werken. Wil je kunnen bellen?
0: Jozef, toen je roep gij rijdt, toen op een vakantie. Ik zou het redelijk aan. Dacht ik. Jozef dacht aan zijn vakantie. Nee, dat is begrijpelijk. Ja, dat is normaal. तो गीत गजल के कार्यक्रम हम सब यहाँ शुरू कर रहे हैं, और ताप तार कर सकते हैं 0 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 उठाएगा और टेलीफोन दे आप उससे कुछ बातें करोगे और उसके बाद आप मेरे लाइन पर आओगे लाइव कार्यक्रम में और हम आपसे फिर कुछ बातचीत करेंगे। गीत गज़ल में कुछ अगर जब आपके पास होगा कोई खसखद अदुर किंग्स प्रेक वर्ड बस कहते जाइए, कोई मॉब भी हो सकता है, कोई फैज भी हो सकता है, तो उसके बाद आपको हम लाइव लाएंगे, आप गीत एक गीत मांग सकते हैं और वो गीत आपके लिए चलाया जाएगा। भैया यूसुफ आप कुछ कहना चाहते थे? ठीक है, हाँ ओके। तो चलिए यहाँ से पहला सिलेक्शन पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है और रात्रि का वक्त है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, योग साहब भी बैठा हुआ है और उनके बगल में मीनू भगवान दीन भी बैठा हुआ है। तो चलिए ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं जबकि आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को।

0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, लता की आवाज़ में आपने सुने गीत गजल के कार्यक्रम में ऊपर फावन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म दिलक मंदिर में से निकाल कर शंकर जय किशन के साज पर ये पेश किया गया। तो देखते हैं लाइन पर कौन है। फावन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत
1: खुदनाफंत भाई मैक्सिला
0: खुदनाफंत सिला कैसे रहले सिला
1: या खत खुतर भाई
0: सब कुछ मोई
1: या या या
0: तब मोई बरखा बरसे इपन बेरख में
1: ना ना ना बरसे तो ना है
0: अब बिना बरसे है
1: ना
0: ओ चाहत रहा तोरे लगे बरसे के तू पठा देले दनहा और हम भीज गईली मखुद और समाचार मोई
1: सब चीत मोई भाई
0: तब रेकल सिला बताओ गीत गजल में कुछ रख ले हैं कोनो फैशन नहीं तो हम फिर हमके तू फर्रास कर दिए बोले तू नाम पूछ ले रही
1: नहीं
0: हैप्पी फंडाक नेक्स्ट
1: नहीं भाई आंध्र केरिया
0: नेक्स्ट टाइम प्रिमा अच्छा सिला बताओ व्हाट विल ही फनाफंत हो रहा
1: इस फॉर फिल्म गेस्ट हाउस
0: हाँ
1: दिल को संभाला
2: दिल को लाख
1: सोच
0: दिल को
2: लाख संभाला
1: लाख संभाला
0: लाख संभाला मैं ने
1: हाँ
0: ऐसे ही या है दिल को लाख संभाला मैं ने ना मिल जाए
1: या
0: यहाँ नौ यूसुफ है हम बाटी और मीनू है जो सामो साइम उस तरह तो फिर दिन बोलो
1: एस खुद भाई हाँ
0: और कुछ कोई ना तोड़ी ना है सिला तो क्या
1: वैसे तो कुछ ना भाई यूसुफ है ना तो उसे पूछिए तो
0: यूसुफ ना मांगे बोले बोले सिला बैल करी तो पूछ ली
1: ना ना हमें वैसे कुछ ना
0: एस खुद
1: एस खुद भाई साइन आउटस्टैंडिंग
0: या थैंक यू वेल
1: या और दा भाई
0: फील लॉस योर प्लेजर दा ये थी इपन ब्यूरख के रहने वाली सिला जी और सिला जी को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। चलो देखते हैं लाइन दूसरा लॉन पर कोई है कोई फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत
3: अस्सलाम वालेकुम राम राम और नमस्कार
0: वालेकुम सलाम नमस्कार भैया कैसे समाचार है
3: जी ऐसे सब मोई
0: बस चले धीरे धीरे ऊपर तू लोग के दया से ऊपर वाले की कृपा से चले हैं
3: चाहे चले के चाहे भी चलावे के भी
0: तो हम लोग अकेले ला चले अपने
3: और हम के आवाज दे ला
0: या या या और कोई नवा हाल भैया मोहम्मद
3: हां एगो पहली वेल
0: बोल
3: कुछ सोचू तो तुम्हारा ख्याल आता है कुछ भूल तो तुम्हारा नाम आता है कब कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को तुम्हारा तो हर बात पर मुझे प्यार आता है
0: अरे क्या बात है शाबाश एल मोई या शाबाश है एल खुद अच्छा अच्छा बताओ कौन गाना मांगत रहे
3: चलो बिरमा रूत मौसम ये पुकारे मस्जिद में बैठी लता और तलत गाय से
0: पुकारे
3: और प्यार और मोहब्बत के साथ सभी सुनने वालों के लिए
0: लिख हम लिख ले एल आन आबूम
3: ये
0: था श्रीमान मोहम्मद दनहा के रहने वाला है तो चलिए अच्छा फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत हेलो
4: Hallo, mijn doel Sila.
0: Dag mevrouw Ursula.
4: Hoe gaat het met jou, goed?
0: Met mij goed. Hoe is het met jou, ja, Ursula? Vandaag ben je helemaal op tijd. Geen vuiltje aan de lucht.
4: Nee. Prima. Ik was die dag ook, ja.
0: Ursula, kan je ze rijden?
4: Het zegt weer ook, ja. Ik lig lekker naar jullie te luisteren.
0: Ah,
4: ik heb onder de dekbed. Heerlijk, met een kopje thee erbij.
0: Oké, dit is toch mooi?
4: Ja,
0: zeker. Thee met dalie het niet, jijver, ever, kruid, nagel, ogel, gaat het in mooi.
4: Is dat zo?
0: Ja, dat moet ik ook doen, maar dat heb ik niet gedaan voor ik hier kwam. Dus dat ga je vanavond doen. Maar ik heb het niet gedaan, zo niet. Ham kruid, nagel, ik heb het niet gedaan, dan is het om te komen. Ja, ik ben ook een beetje hees. ऊपर से संजो के भीज गई हम देना तनी से
4: तोर नामक गाड़ी कैसे चले है तो बोले एक बार बोले यहाँ आरी भाई गाड़ी तो ठीक चले है हम बाकी जब हम ब्रेक मारी ला हमार पॉकेट में दर्द हुआ है नीदरलैंड से देखो आह ब्रूर द ऑटो इज प्रीमियम मार टेलकंस और सिगरेम डू हैव पेन इन फोर्थ मिनी
0: या दैट फॉर वर्स एक्चुअली दैश
4: एक दिन लम फॉर यो तो हिंट सुन कर
0: नहीं तो सेल बॉय प्रैक्टर ये वाला सुन ले रहे कभी हम
4: और देख ले तो सुन ले तू हाँ और एक नोक हिंट सुन ना ये वाली
0: हाँ गो अहेड
4: मनेर Uw hond achtervolgt mij op een fiets. De eigenaar zegt, dat kan niet. Mijn hond heeft geen fiets. Die heb je ook al gehoord.
0: Nee, ik wil naar Janila. Ik wil naar Janila.
4: Ja, dit is... Zullen we het toch een beetje?
0: Ha. Nee, maar mooi. Hij is in het is toch mooi, toch? Leuk.
4: Jullie moeten ook met mopjes komen.
0: Ja, ja. Dat zeg ik ook altijd. Ook aan Latifa, dat is Latifa, is mop.
4: Oh,
0: zeg ik ook altijd.
4: Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Dus
0: nee, geweldig. Als je het hele rijtje toch mooi. Is goed. Maar Ursula, waarom kunnen wij jou vanavond blij maken?
4: Ik heb tegen Jozef gezegd. Moet ik zelf even zeggen?
0: Ja. John Jozef, ik heb het hele wala.
4: Ja, dat is een favoriete nummer van mijn man was dat. Gori bula we tere saudiya bu, na we tere saudiya man bija deze.
0: Arre?
4: Ja?
0: Ham to sanchi ab to dooro jaiye.
4: Nee, to dooro jaiye, to dooro sab jaiye.
0: Na ta ham jaldi sako karaoke wa khoj deti tore kati.
4: Ik zing ook karaoke ook, met een paar mensen.
0: Oh, dat is toch mooi? Nee.
4: Ik heb geen veel nummer gezongen.
0: Dan kan je optreken dit betekent, dan kom ik samen met Jozef. Nee, serieus.
4: Nou echt, ik zing graag. Het is mijn hobby, weet je, muziek, weet je, daar hou ik van.
0: Ja, het is een prachtige hobby, karaoke, ja, geweldig.
4: Kijk, je moet toch wat doen in het leven, toch?
0: Ja, waar gaan we muzikanten zoeken? En,
4: geen drinken, geen uitgangstip, ja. Weet je wel.
0: Nee.
4: Zo hou ik me bezig.
0: Dat is prachtig, heel mooi. Blijf dat gewoon doen.
4: Ja, zeker.
0: Karaoke is prachtig. Heel mooi.
4: Ja, ik vind het leuk hoor. Het is altijd, het is natuurlijk één keer in de week ga ik, andere dagen ben ik bezet met andere dingen.
0: Kom je ook in Den Haag?
4: Ja, ik kom ook in Den Haag hoor, maar niet zo vaak hoor.
0: Oké. In de buurt.
4: Ik kom wel in Den Haag hoor.
0: Oké.
4: Vorige week was ik in Den Haag, had ik een bruiloft.
0: Oké.
4: In de ene mandir, Glaslaan heet dat?
0: Oh ja, deel mandir.
4: Ja.
0: In Glaslaan, Jacob.
4: Toen was ik daar vorige week zaterdag.
0: Oh, mooi.
4: Goed, we hebben genoeg gepraat, hoor ik.
0: Oh nee, die andere lijn is nog vrij, dus dat maakt niet uit.
4: Oké.
0: Mevrouw Ursula, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan hoor.
0: Ik wens u een fijne avond, heel veel luisterplezier.
4: Ja.
0: En tot next week.
4: En fijn dat ik even mag inbellen, hoor.
0: Zeker weten. Je mag altijd inbellen.
4: Zolang je dan ook flexibel te heren, dat je meer mensen krijgt met inbellen.
0: Ja. Kabi hoor, kabi na ja.
4: Kunnen sommige zender, waar ik hoef de naam niet te noemen. Mm-hmm. Die lijnen zijn zo bezet. Denk bij mezelf, jongen. Maar ik ben ook niet zo iemand, hoor. Dat ik graag inbel. Daar hou ik niet van.
0: Nee, maar wij hebben twee nummers.
4: Oh.
0: Anders zou het drukker zijn. Maar we hebben twee nummers, gelukkig.
4: Oh, gelukkig.
0: Maar je kent toch beide nummers? Je kent toch beide nummers, Ursula?
4: Ja, ik heb beide. Ik heb beide, ja.
0: Nee,
4: klopt,
0: prima.
4: Klopt.
0: Ja, nee, goed.
4: Hey, fijne avond en tot horen ze weer, ja?
0: Ja, oké, nogmaals. Fijne avond. Ja. Heel veel
4: jullie lastig, ook allemaal. Groetjes, hoor.
0: Dankjewel.
4: Oké, dag.
0: Ursula. Ja, ये थी उर्शीला जी रोटरडाम के रहने वाली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से उर्शीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद इर्शिला जी को धन्यवाद देते हुए चलिए हमने प्लेयर में एक गीत रखे हैं। ये गीत हम जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद 6 महीना हो गया होगा हमने सुने भी नहीं, लेकिन आज मेरे सामने दिखा तो हमने सोचा चलो इसे रख देते हैं। लता जी के बाद एक बार फिर लता जी इस तरह से

तारों भरी रात है, लता जी की आवाज़ में सुनाया गया आपको फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के रात के कार्यक्रम में। चलिए घड़ी पर देखो तो 5 मिनट बाकी, 8:30 बजे 5 मिनट फॉर ऑल ऑफ नेक है। आप चुने फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है इपन ब्यूरो के रहने वाली शीला जी के लिए। शीला जी आपकी गीत तैयार है प्लेयर में, हमें सिर्फ बटन दबाना है। इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका शीला जी की तरफ से, उनका माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ है श्रीमान यूसुफ, यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ शीला जी की तरफ से जो इपन ब्यूरो में बैठी है, शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। चलिए शीला जी आपकी मांगी हुई गीत फिल्म गेस्ट हाउस में से निकाल कर हम लोग पेश कर रहे हैं इस तरह से।

मौसमी ये पुकारे, बर्मा रोड निकती तुएं सस्त कही है 1962 का ये फिल्म है और लता जी और तलत साहब मिलकर आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। गीत गजल के कार्यक्रम में हमने पेश की, विशेष करके देनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद की तरफ से सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हम लोगों के लिए। और हम लोग ये

शीला जी हैं। शीला जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको धन्यवाद देते हुए चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, जिस गीत के जिक्र आपने की है वही गीत हम लोग चलाने वाले हैं और चलाने वाले हैं शीला जी के लिए रोतरदम के रहने वाली है।

गोरी बुलाए तेरा सांवरिया, हेमंत कुमार जी की आवाज़ में हेमंत कुमार के साज पर निकली सस 1956 के ये फिल्म है, फिल्म ताज में।

0: का
1: मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और शमशाद बेगम की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म शबनम में से निकाल कर ये गीत और हमने पेश की पान हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है मेरे साथी जो है जनाब यूसुफ, जनाब यूसुफ की तरफ से यानी माशूक यूसुफ की तरफ से, उनके माशूका जो इबन बेरख में बैठी हुई है और हबल स्कूल पर झूल झूल कर कार्यक्रम सुन रही है और ये गीत बहुत इत्मीनान से सुनना चाहती है। तो यूसुफ की तरफ से सिला के लिए, सिला की तरफ से यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ, माशूक की तरफ से माशूका के लिए एक शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए ये गीत हम चला रहे हैं इस तरह से।

हुआ। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, जबकि ये गीत की फरमाइश पढ़ रहे हैं और वो है, देखते हैं, इपन बेरुख के रहने वाला मेरे सामने जो बैठा हुआ है जनाब यूसुफ, माशुक यूसुफ के तरफ से माशुका शीला जी के लिए जो इपन बेरुख में बैठी हुई है और कार्यक्रम सुन रही है, यूसुफ की तरफ से शीला के लिए शुभकामना के साथ शुभरात्रि पेश करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में ये गीत पेश हुआ यूसुफ के जरिए से। यूसुफ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था ओपन एयर के साँच पर निकते फिर से का ये गीत फिल्म कश्मीर की कली से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है, देखूं समय की ओर, जी हाँ, फिल्म राजहट में से मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चलो सुनते हैं वो आपको क्या सुना रहा है।

ये वादा करो चांद के सामने, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाएं फिल्म राजहट में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि गीत गजल के कार्यक्रम जारी है। और मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ और उसके बाजू में बैठा हुआ भैया मीनू भगवान दीन जो कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, और कुछ दिन में ये भी हो जाएगा, कौन जाने भैया मीनू भगवान दीन और भैया यूसुफ मिल के ये कार्यक्रम कर रहे, बहुत अच्छा लगेगा। तब मैं वहाँ बैठूँगा, वे लोग यहाँ बैठेंगे। चलिए कार्यक्रम हम आपको जारी कर रहे हैं और आगे और पेश करने वाले हैं। चलिए दनहाक से चलते हैं सूतरमेर। सूतरमेर बैठी है मीला जी। मीला जी आपको एक शुभ रात्रि और भैया मंसूर को भी। मीला जी के ये गीत हमने प्लेयर में रख चुके हैं, तो चलिए सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हम पेश कर रहे हैं फिल्म मीम साहब में से निकाल कर और निकती सेशन 5 तक का ये गीत है। इस तरह से आ रहा है मीला जी के लिए सूतरमेर के रहने वाली।

दिल दिल से मिला कर देखो, आपको सुनाया गया लता जी की आवाज़ में पेश हुआ निकनी ससम फैफ तक का ये गीत मेम साहब में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और गीत गज़ल के कार्यक्रम में चलाया ये गीत सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए। मीला जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और भैया मंसूर, आपको भी एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। चलिए, एक गीत हम पेश कर रहे हैं आज की रात, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने नहीं सुने हैं, हो सकता है शायद आप भी नहीं सुने होंगे, हमारे सहयोगी शायद चलाए होंगे, और अगर सुन ही लिए होंगे तो मेरा बदनसीबी है, लेकिन चलो मैं भी बहुत दिन हुए ये गीत नहीं सुने हैं। चलिए आपको हम सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

रफ़ी साहेब और लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो सोनदक सीफी 3 मई के गीत गजल के कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आप भी ये गीत पसंद किए होंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले, लाइन पे कोई है भैया? अच्छा अभी चलिए लाइन पर अभी देख लेंगे, लेकिन अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है दना के रहने वाली तेलमा जी। दरहा के रहने वाली तेलमा जी आपको आपका भी हृदय से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपने तार की आवाज़ सुना, मुझे अच्छा लगा और हम सभी श्रोताओं को भी अवश्य अच्छा लगा होगा। तेलमा जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और धन्यवाद देते हुए चलिए आपकी मांगी हुई गीत हम पेश कर रहे हैं। इस्माइल आज़ाद कव्वाल जी, इस्माइल आज़ाद कव्वाल आपको सुना रहा है, बहुत ज़बरदस्त कव्वाली है। तो लीजिए तेलमा जी आपकी मांगी हुई गीत हमने रखे हैं और लीजिए इस तरह से।

0: कव्वालों का बादशाह इस्माइल आज़ाद कव्वाल आपको सुनाएं, गोरी छलके ना गगरिया जरा धीरे चलो रे। तेलमा जी बहुत दिनों बाद मैं भी ये कव्वाली सुने, ये मोहब्बती कव्वाली सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के रात के कार्यक्रम में, जबकि दनहाके रहने वाली तेलमा जी, दनहाके रहने वाली तेलमा जी ये गीत मांगे हैं। तेलमा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कव्वाली ये आपको अवश्य पसंद आया होगा, क्योंकि जिद कव्वाली के जिक्र आपने की है वही कव्वाली हम लोगों ने मिल के चलाए हैं। तेलमा जी आपको भी एक शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है ना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनावंत जय श्री राम। कैसे समाचार भैया? नमस्कार भैया प्रेम।
1: चले है धीरे धीरे भाई, और वहीदा बोले जोर से चलिए जब तब गगरिया छलक जाए तब मुड़िया भीग जाए तो
0: वही तो
1: छलक धीरे धीरे चल जाए,
0: छलक जाए तो बड़ा मुगिलक रही
1: है। छलक जाए तब
0: फोरा प्रेम फोरा जी एगो पैक ले ले रही यहाँ तो हमें छलक जाए तो कमती हो जाए तो
1: चले ठीक धीरे धीरे वही ना बोलिए धीरे धीरे कभी आएला कभी जाएला हम बेगाड़ के लौटा है देना कभी यहाँ कभी वहाँ जब यहाँ तब आप लोग के याद हो जाए तब इसीलिए कि अतवार के कॉन्टैक्ट हो जाए कौन लड़कन।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम याद तो कर ले तू बोले कभी ही या कभी मौतम के गाना याद हो गया रफी वाला था मैं यहाँ तू कहाँ वही हाल है।
1: ना सब ठीक है फर्दर खजोन था इतना आलोस का प्रीमा और होप इक बेजरी होक
0: खलो का मौ फलो पर हम लोग के चले सवेरे जे जागी ला तो देखी ला हमार प्लेटफार्म थे के कर प्लेटफार्म थे तो पता लगे ना हमारे ही प्लेटफार्म थे
1: तो सही वाला करिया ना दिखा है करिया ना दिखा है
0: या प्रसिद्ध भैया प्रेम बताओ गाना से पहले कुछ रख ले हैं कोई मॉप कोई कुछ वदन होक
1: ओइसन तो ना है सच हम एक बार ओके बोल चुका रहा ओके ओके हम इंडिया में सुन रहे ली
0: हां मार्क तक नहीं आई
1: बोले बोले बांस के जर में घास ना जमे है जब तक
0: दैट इज वायर बात तो सही है
1: के घर में घास ना जमे
0: जमे ना तब
1: ठीक है कोई भाई हां
0: बोले बोले समझो या का माउथ अच्छा भैया प्रेम बताओ कौन गाना से आज हम लोग तो की खुशी कर सकेले बताओ
1: गनवा के बोल है कैसे रहा पीछे आया है मुझे फिर याद वो जालिम बड़ा पुराना गाना है आया है मुझे फिर याद वो जालिम अतिसन बहुत पुराना गाना हम 10-15 बजे इसके रीते ही गनवा सुने रहे थे फुर्रत है सही तकनीक
0: हां हां नेगो कैसे गाना क्लब
1: मुकेश कैसे गाना
0: हमने यहाँ फिल्म देवर के है काम आया एकदम पर
1: हम बहुत पहले से बता दियो कि हम लिख लेंगे
0: तू ना डरा
1: अच्छा
0: ओकर जियोग्राफी हम खोज के बता दे तू क्या
1: ठीक है ठीक है
0: और वैसे कुछ ना हाल भैया प्रेम
1: हाँ राम राम जय हिंद गोपाल और अच्छा से रहिए तू लोग नतीजा ये उसे खाते हुए मैं फकांसी या इसकी नोक एक ओक जालस दिस
0: हम हर वीकेंड फकांसी रहे फकांसी रही ला
1: आना जाना
0: पहले सेंटर अंदर घूम के चला आएगा ये था भैया प्रेम तेनहा के रहने वाला भैया प्रेम का हृदय से स्वागत है एक बार फिर। और चलिए हमने प्लेयर में क्या रखे हमने यहाँ चलिए हाँ चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रख दिए हैं मैथ मुकेश का क्या ख्याल है।

मैं तो मुकेश और लता जी, मैं तो मुकेश और लता जी फिल्म झोला में से, अगर गलती नहीं कहा, फिल्म झोला में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए अनसर चॉइस फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है बिया जी, देनहा के रहने वाली बिया गजराज जी के लिए। बिया जी, जिस गीत का जिक्र आपने किए हैं वो गीत हम लोग पा गए हैं, चलिए वही गीत हम आपको सुना रहे हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के माध्यम से। तो लीजिए देनहा के रहने वाली बिया जी के लिए, बिया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए बिया जी, लीजिए इस तरह से आपकी मांगी हुई गीत।

वाह क्या बात है, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। और ये गीत चला देन हाँ के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की हैं वही गीत हम लोगों ने चलाए हैं। शुभकामना के साथ फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि माइती मुकेश द हार्ट रब ऑफ मिलियंस और कंचन जी, मुकेश जी बहुत से सारे सवाल कर रहा है, चलो सवाल के जवाब या कंचन देगी या आप देंगे।

और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहे थे। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? नहीं खन तीन देखूं तो फैफ से 1975 का ये गीत धर्मात्मा में से निकाल कर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। एक आखिरी शख्स बचा है, वो धन आके रहने वाला भैया प्रेम। भैया प्रेम, शुभकामना के साथ धन्यवाद देते हुए चलिए भैया प्रेम के लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ। क्या ख्याल है भैया प्रेम? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हुए इस तरह से धन आके रहने वाले भैया प्रेम के लिए।

वाला श्रीमान प्रेम, श्रीमान प्रेम के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए भैया प्रेम को हम धन्यवाद दे रहे हैं भैया प्रेम को। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ तक था कि ये कार्यक्रम हमने पेश किए गीत गज़ल।

0: यहाँ तक था ये कार्यक्रम। मैंने पेश की गीत गजल श्रीमान मीनू भगवान दीन जो मेरे सामने बैठा हुआ है, और भैया यूसुफ, भैया यूसुफ को और मीनू भगवान दीन को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा साथ दिए। भैया यूसुफ लोगों को धन्यवाद दीजिए, आपका माइक खुला है।
1: Ja, ik wil de mensen bedanken die vanavond hadden gebeld. Dat is mevrouw Sila uit Ippenburg, de heer Mohamed uit Den Haag, mevrouw Ursula uit Rotterdam, de heer Jozef uit Ippenburg, mevrouw Mila uit Zoetermeer, mevrouw Thelma uit Den Haag, mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag en de heer Prem uit Den Haag. Wil ik al die mensen bedanken namens mijzelf, Jozef, Minu en Bhai Ganga.
0: Bhaiya Yusuf, thank you well. Bhai Minu, thank you well. Yuli bhai the badang that you live with from here on Vesak sign on my the help in all fall. Thank you well. And sunle wala srotao, aap sun hi chuke hain. Sabhi ko dhanyawad dijiye bhaiya Yusuf. Main abhi bhi sabko dhanyawad de raha hu Pawan Hindustani Radio ke zariye ki aapne karyakram mein bhag li. Mere baat aap sunoge vigyapan aur news aur news ke baad karyakram hamare sahyogiyon pesh karne wale hain.

आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे, भैया यूसुफ आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा, मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला द्वंद्रदाह को, यानी गुरुवार को, द्वंद्रदाह को 12 और 3 के दरमियान, रात्रि को नहीं, जी नहीं, रात्रि को, दिन को 12 और 3 के दरमियान। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और डायरेक्टर की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए एक शुभ रात्रि।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो कहते हैं यारो, प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते ही, कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

और आप की आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाते हैं कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तमाम कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो, आपको क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठी, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया। तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों ये सब गीतों का भानु प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं, है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch, check!

और व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यानी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल की जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं।

फार होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे। और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा, विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में। और फिल्म मूवी का नाम है अनोखी अदा। अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं।

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 907 तक 3 फेवन तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से ये सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान शुभ ग्रह धन लाभ स्थान में स्थित हो या इन स्थानों को देखते हो। बुध निर्बल हो तथा के द्रुप योग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार हैं। बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह हो इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लग्नेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो। यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो जाएगा।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लगनेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो, मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, सपन तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ सपन और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता।

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। सुनने वालों,

अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ़ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्ज़ी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्नि कोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वह अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

वालों अब हम आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। सुनने वालों, भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अपने की श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। हमारे साथ कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं श्रीमती शांता जी और भाई राजेंद्र जी। तो भाई राजेंद्र जी, आप तो कुनोप के आगे बैठे हुए हैं और शांता जी के लिए बटन दबा दो ताकि वो भी कुछ कह सके।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारे के बिना, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। तो प्यारे आत्माओं, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की सुनने वालों को सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार होवे। आप जैसे सुन रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और साथ में राजेंद्र जी, और यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश फाहन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा के आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। ये आशा उम्मीद है कि आपको ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप हमारे साथ प्रेम और प्यार से साथ में बने रहे। तो संजय जी,
0: अति सुंदर रूप से और जा करके शांता जी अपना संदेश को हम सबको सुनाए। राजेंद्र जी, आप भी कुछ कह दो तो हम सब आगे बढ़े।
2: भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्यार नहीं।
0: कोई इस मौसम और बैठे हुए सोचते होंगे कैसा और ये मौसम है, कैसा ये दिन है, आज हम सब ये कार्यक्रम लेकर क्या सुनाने वाले हैं। अभी हम सब कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ेंगे, पर जो घर पे बैठे हुए उदास बैठे हुए हैं तो उनके लिए पहले एक सुंदर सा और गीत को सुनाया जाए।
2: जी जरूर, उन लोगों के लिए आज मौसम तो अच्छा है लेकिन बारिश है, तो उस बारिश भरी मौसम के साथ साथ एक अगर बहुत अच्छा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार भजन सब सुनेंगे तो मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। तो लीजिए, अब सुनिए।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। दोस्तों सुनने वालों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश हर सप्ताह कुछ ना कुछ और संदेश लेकर आपके लिए उपस्थित रहते हैं। हमारा विषय आज का क्या है, अभी उसके ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कार्यक्रम को सुनकर लोग और ये प्रश्न एक होता तो मैं शायद सोचता कि भाई चलो इसे कहीं और प्रोग्राम में और पूछ लेंगे, पर और लोग ये प्रश्न किए राजेंद्र जी, लोग को जिज्ञासा है जो आपने पिछले सप्ताह बताए कुंभ मेला के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में आप बताएं और हम सब के पास ये प्रश्न हो गए कि लोग ये कहे हमसे कि भाई कम से कम कुछ और उसके बारे में बताइए, और लोग उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हो। राजेंद्र जी आपसे यही प्रश्न है कि कुछ और हम सबके ये कुंभ मेला के बारे में व्यतीत करें।
1: फाउन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने कुंभ मेले के बारे में जानने की दोबारा से जिज्ञासा जताई, और इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इसमें कुछ चेंजिंग रहा, तो थोड़ा सा शाही स्नान कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन अभी जो 15 मार्च से लेके और 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा, तो कुंभ मेला की कुछ पौराणिक समय में कुछ बूंदें अमृत की हरिद्वार में गिर गई थी समुद्र मंथन के समय में, इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है, तो इसलिए ज़्यादा करके चर्चा हरिद्वार की रखेंगे। 12 वर्षों में मनाए जाने वाला कुंभ का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार कुंभ मेले के स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है, और पंचांग के अनुसार कुंभ की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि यहाँ कुछ कुंभ के आयोजन के समय करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, और अब कुंभ भारत ही नहीं विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बन चुका है। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी एक आधार साम्य सत्य की खोज, इतने विभिन्न मार्गों से ये कुंभ मेला है। पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा मेला, भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों को भुलाकर सभी प्रकार के लोग और साधु संत बिना किसी निमंत्रण के कुंभ मेला के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कुंभ एक उच्चतम शब्द है। यहाँ देश विदेशों से अनेक लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने भारत को जानना है या समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको समझने के लिए कुंभ सबसे अच्छा माध्यम है। कुछ एक उत्सव है, कुंभ एक उत्सव भी है, और चेतना का विस्तार का कुंभ एक महायज्ञ भी है। जीव और जगत के कल्याण का कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर होता है। पूर्व में गंगा नदी के तट पर प्रयाग में, पश्चिम में छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। कुंभ मेला औसतन 3 वर्ष में एक जगह होता है, जिसमें कि 12 वर्षों में एक जगह होता है। वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। ये सब अखाड़े अपने आप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के सब एक ही स्थान पर पहुंच जाना अपने आप में महानता है। एक ही शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। बस संजय जी, अब कुंभ मेला की जानकारी संक्षिप्त में हमने दी, अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे यहां के लोगों को, नीदरलैंड के और सूरीनाम के लोगों को।
0: ये अच्छा संदेश आपने दिए भाई राजेंद्र जी कि कुंभ मेला पर, हमने तो अभी तक कभी कुंभ मेला गया नहीं और ये बात सुनकर के बस इच्छा हो रहा है। पर हमारे साथ में बैठे हुए शांता जी जो कि जाकर कुंभ मेला घूम आए हैं। कौन सा साल में गए थे ये कुंभ मेला?
2: 2003 में हम गए थे।
0: तो आप गए तो वहाँ कैसा लगा और कैसा है? जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि एक महा उत्सव तथा ऐसा सुंदर रूप से और वो यानी कि एक रखा जाता है।
2: एकदम आप सही कह रहे हैं, राजेंद्र जी जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही है कि कुंभ मेला, वो नाम शब्द कहता है कि मेला है, तो वो वाकई में मेला है।
0: दोस्तों ये है फाहम हिंदुस्तानी रेडियो और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आपके लिए रख रहे हैं। और राजेंद्र जी आज का विषय जो कि रखा गया है कि 14 प्रकार के मृत्यु। दोस्तों 14 प्रकार के मृत्यु होता है और कभी आप इसके बारे में शायद सुने भी होंगे, तो आज हम सब उसी के बारे में एक दूसरे से और यानी कि वार्तालाप करेंगे तथा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 14 प्रकार के मृत्यु, तो अब इसके बारे में आप सुनकर डरना नहीं, क्योंकि डरने से हम सब इसके कार्यक्रम नहीं बनाया जाता उसके लिए। पर इसमें जो ऐसा हमारा भाषा है ना, हमारा भाषा इतना सुंदर रूप से है कि अगर जब हम कहीं मोहन के बलाए और मोहन ने और जवाब नहीं दिया कि मोहन कहाँ हो, मोहन पहला बार में जवाब नहीं दिया तो मोहन के दूसरा बार में हम और जोर से चिल्ला कर कहते कि मोहन किधर हो, और जब मोहन दूसरा बार भी कोई जवाब नहीं देता तो हम क्या कहते हैं कि मोहन किधर मर गया। तो मोहन चाहे जहां भी हो, हालांकि मरने के बाद यहां नहीं होता है, पर मोहन जरूर जवाब दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम सब 14 मृत्यु उसके बारे में बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी कुछ और उसके बारे में हम सबके सुनाने वाले हैं।
1: हाँ, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि 14 मृत्यु तुल्य, 14 प्रकार के व्यक्ति मृत्यु तुल्य बताए गए हैं, मृत्यु के समान हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य व्यक्ति हैं उनसे, उनके साथ व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे कि कैसा है इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। जब श्री राम और रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है।
0: अंगद ने रावण से बोला, यानी कि जब वो दूत बन करके गए थे ना, तो वहां उनसे कहा कि तू तो मरा हुआ है,
1: तुझे मारने से क्या फायदा, तू तो पहले ही मरा हुआ है। तो रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? तो अंगद बोला, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार का भाता भी लेता है। भाता मतलब
0: जो फिल्म में देखते ना, जो लुहार लोग ऐसे फूकी फूकना मारता है,
1: हाँ। वो भी सांस लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बतलाई, मृत्यु समान जो व्यक्ति होते हैं 14 प्रकार के, तब उन्होंने वो बताई। सो अंगद के द्वारा बताई गई ये 14 मृत्यु के दौर में, ये बातें आज के दौर में भी लागू होती है।
0: तो इसके बारे में हम सब अब जरूर आगे बढ़ेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि 14 प्रकार के यानी कि हम सभी अभी सुनेंगे कि उसमें से कितने हम सब के कोई अवस्वभाव होगा, तो शायद हम सब उन बातों को सुन करके और हम सब अपने आप के और यानी कि उसमें कुछ ना कुछ और यानी कि बदल कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को बदलने नहीं चाहते। पर हम जब अपने आप में कोई गलतियां देखे तो जरूर हम उसे खुद को और बदलने की कोशिश करें। दोस्तों ये 14 मृत्यु आप बिल्कुल उसे पे नहीं जाना, क्योंकि जो एक होता है देहांत, जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है हमारा, वायु आकाश अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का शरीर जो काया हमारे बना हुआ है, और इसमें से जब जीव उड़ जाता है तो उसे कहते हैं देहांत, और ये जो हम सब अभी बात करने वाले हैं, तो ये है 14 प्रकार के व्यतीत मृत्यु तुल्य, उसके बारे में बातचीत होगा। राजेंद्र जी जो कि इस समय, और मैं देख रहा हूँ शांता जी तैयार है कुछ कहने के लिए, तो उनका
2: जी जी जी अभी संजय जी ने कहा मृत्यु के बारे में ना, तो मृत्यु के बारे में नीदरलैंड में कुछ कह देती हूँ कि व्हाट इज द डेथ। द डेथ इज एन ओन ओम केयर बार टू स्टैंड वर बाय अन फोर हेन लेवेंड ऑर्गेनिज्म नीट मेयर ग्रोइट एन हेन स्टॉफवेसलिंग ऑफ अंडर एक्टिव लेवेंस फंक्शन मेयर हैव, दैट इज द डेथ दैट से है।
0: तो ये है देहांत, जिसे हम कहते हैं शांता जी,
2: जी
0: कि जबकि शरीर में से जो शरीर हमारा होता है ना, तो वो जैसे कि एक पिंजरा में एक पंछी होते हैं, और कहावत है कि जब पंछी पिंजरा से उड़ गया। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: मन

0: दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विषय जो कि 14 प्रकार के मृत्यु, मृत्यु तुल्य कहा जाता है। और जैसे कि आप अभी राजेंद्र द्वारा उनसे सुने कि अंगद द्वारा रावण को बतलाई गई ये बात, आज के दौरान में भी यदि किसी अव्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक और दुर्गुण भी आ जाता है तो वे मृत्यु समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भाई रूपचंद जी ने और फोन करके और कहने लगे कि भाई अति सुंदर लग रहा है पर अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है। पहला जो कि काम वश वाला, राजेंद्र जी आप ही सुनाइए कि पहला मृत्यु तुल्य क्या है।
1: पहला मृत्यु तुल्य है जो संसार के भोगों में उलझा हुआ है वह मृत समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में ही लीन रहता है।
0: यानी कि जो अपने लिए सोच रहे कि अपने लिए जी रहे हैं और अपना मनमाजी कर रहे हैं तो वो भी मृत्यु तुल्य में गणित है। जो दूसरा होता है भाई राजेंद्र जी, उसके बारे में अगर आप कुछ कह सके।
1: हाँ, जो वाम मार्गी है, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले,
0: यानी तेह खस्ता उल्टा, जो कि जो हमें
1: जैसे
0: हमें
1: लोग जब दक्षिण से चलते हैं, हाँ, उल्टा तो वो उल्टा चले बाम से
0: अपने मनमानी भी।
1: हाँ, लोग जैसे राइट से चलते तो वो लेफ्ट से चलता है।
0: जैसे सरकार ने हमें कहा कि हमें ये नहीं करना का है, वो नहीं करना, तो वो वही करेंगे।
1: हाँ, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है,
0: यानी कि नियमों को नहीं देखते हैं। हाँ, कोई प्रकार के,
1: हाँ, सकारात्मक एक होते है, सकारात्मक मतलब अच्छी सोच, एक होती नकारात्मकता जो उल्टी सोच, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं।
0: तो शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: ये भी हम घर पे भी देख सकते हैं ना, कोई बच्चे के बोलो कि बच्चे आप स्कूल जाओ या अच्छा काम करो तो
0: नहीं, शांता जी ये बच्चों के लिए नहीं है, ये संदेश बच्चों के लिए नहीं है, बस हम लोग अपने जो हम लोग के हैं, हम सब बड़ों के लिए, क्योंकि ऐसे बात होता है कि इसमें कुछ संदेश होता है और संदेश हम बड़ों, बच्चों तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
2: वो तो बात सही है, तो पर बच्चे के नहीं है, नहीं,
0: पर ये
2: सभी के लिए है,
0: सभी, हाँ,
2: सभी के लिए है।
0: और खास करके ये हम सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि हम अपना गलती नहीं देख पाते।
2: हाँ, हम तो कभी कभी अपन मनमानी कर लेते हैं,
0: मनमानी करते रहते हैं और अपना गलती नहीं कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम राजेंद्र जी, दूसरा जो कि वाम मार्गी, उसके बारे में जो आप बताए, पर तीसरा क्या है राजेंद्र जी?
1: तीसरा व्यक्ति जो कंजूस है, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत्यु समान ही है।
0: यानी कि कंजूस, हम लोगों ने सुने, देखो सत्संग में एक बार मैंने भी सुना था कि तीन प्रकार के होते, एक चूस, एक कंजूस और तीसरा मक्खी चूस।
1: हाँ तो मक्खी चूस मतलब जो सबसे ज्यादा कंजूस।
0: हाँ, तो ये लोग भी, और यानी कि हम सबको उतना कंजूसी भी नहीं और रखना रहना चाहिए, ताकि हम सब ये जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य बताया गया है उसमें अपना पहचान देखे और हम उससे भी, यानी कि जब हम अपने आप में देखेंगे उसे तो हम अपने आप को बदल भी सकेंगे। और भाई राजेंद्र जी, अगर जब ज्यादा नहीं पूछो तो चौथा क्या है?
1: हाँ, जैसे संजय जी आपने मक्खी चूस का जिक्र किया है तो हम चाहे कि इसको आपको क्लियर कर दे कि मक्खी चूस का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा कंजूस होता है मक्खी चूस,
0: बता दो भाई।
1: जैसे कि आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: आप नहीं, जो मक्खी चूस व्यक्ति है वो, और दूध में मक्खी गिर जाए, तो वो सोचता है कि दूध में मक्खी गिर गई तो मक्खी को उठा के उठाएगा तो उसमें कुछ दूध लग गया तो उसको भी चूस लेता है और फिर मक्खी फेंकता है तो उसको मक्खी चूस बोलते हैं।
3: सही बात, सही। शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
2: नहीं, राजेंद्र जो कहा वो सही कहा, उसको
3: सही,
2: उसको मक्खी चूस कहता है।
3: बिल्कुल सही। राजेंद्र जी, बस चौथा और सुना दो ताकि हम सब फिर एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत की ओर बढ़ेंगे।
1: जी, चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो वो भी मृत ही है, अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
3: और कहने के मतलब ये है राजेंद्र जी कि गरीब को मदद करना चाहिए, और जो ऐसा दरिद्र होते जो औरों के मेंशन दी अंदर नीच खुनन, यानी कि हॉलैंड में हम सब कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है और वो भी अति दरिद्र में, यानी कि 14 मृत्यु तुल्य में कहा गया है।
1: हाँ, यहाँ पे गरीबी पैसा से नहीं है। गरीबी का यहाँ पे मतलब जो है धन से कम है, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान और साहस से भी है। धन से तो गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन आत्मविश्वास, सम्मान और साहस व्यक्ति का खुद का होना चाहिए।
2: जैसे वर्देरिंग, अच्छा, ये सब चीजें ना मिली अपने के ना रहे तो वो भी हैगा अति दरिद्रता।
1: जी,
3: अच्छा संदेश जो हम सबको और राजेंद्र जी और शांता जी सुनाए, तो हम सब एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे। भाई राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है?
1: गीत का बोल है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।

भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।

0: बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राजेंद्र जी, अति अर्थ भरी और सुंदर रूप से ये अनूप जलोता जी हम सबको गीत को और सुनाए। अभी आपने हम सब ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में बता रहे थे और 4 तलक आप बता चुके हैं, पर हमें जिज्ञासा है और सुनने के, राजेंद्र जी, तो पांचवा क्या है, पांचवा मृत्यु तुल्य क्या है?
1: जी जरूर, आपका जिज्ञासा पूरा होगा। पांचवा मृत्यु तुल्य है विमूढ़, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है।
0: मूर्ख जो ची हम लोग बोले सन्नाम में दोंग
1: दन
0: अभी आप सीख गए।
1: हाँ, जो व्यक्ति दुम रहे,
0: दम,
1: दम, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो।
0: हाँ जी,
1: जो खुद निर्णय न ले सके,
0: यानी कि बस ले सिंह ना ले ही पाता, नहीं ले पाते
1: जी, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने की किसी और पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवन होते हुए भी मृत समान ही है। ऐसा व्यक्ति जिंदा होते हुए भी, जीते होते हुए भी मरा ही हुआ है, समझो।
0: ओ हो, बड़ा गंभीर बात बोल दिया आपने। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: जी
2: हाँ, कहते हैं कि मैं से दी खेन सेल्फ रेस्पेक्टिव ऑफ दी ओक खेन सेल्फ कैनसिव एंड दी खेन एक बसलेसिंग का नेम दिस एन ओक खलाइक आन आन दो ये पर्सन।
0: अब लेतरलक शामता जी ऐसा नहीं कहने क्योंकि बिल्कुल तो ये पर्सन दोस्तों
2: मैं सो इस इट आज जस्ट खेन सेल्फ बसलेसिंग का नेम आल्टेड अफांकलक मुझ सेन फान आंदर। Dan kan je ook niet vooruit gaan. Dan blijf je gewoon op dezelfde plek zitten. Dan moet altijd iemand anders komen om jou naar voren te trekken.
0: Dosto, je ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम कोई प्रकार से और प्रकाश डाल सके। ये कहावत तो हम जानते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाते है जब परखने वाले नहीं समझाने वाले मिल जाते हैं। तो इस बात पे हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमें हमारे संतों ने बहुत सुंदर रूप से संदेश हम सबको दिए है कि ये 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो है, 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है, हमें उसमें अपने आप को पहचाने और अगर कुछ उसमें जो हम अपने आप को पहचानते हैं तो क्या शायद हम उसे अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ज्योति का प्रकाश के ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को बदलना है, पर कोई अपना गलती अपने में देख सके तो वो हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, हम जो राजेंद्र जी से पूछ रहा हूँ कि भाई राजेंद्र जी, पांचवा तो आपने बड़ा गंभीरता वाला बताया कि जो मूर्ख होता है, जो अपने पसलेसिंग नहीं ले पाते, वो मृत्यु तुल्य के समान है, पर छठवा क्या है?
1: छठवा है संजय जी अजसी। अजसी यानी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है, जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है।
0: बस जो कोई प्रकार के सम्मान नहीं होता है, यानी कि जो वर्देरिंग नहीं पाता। शांता जी, आपके कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, पर हमारे पास एक टेलीफोन आया था राजेंद्र जी, और टेलीफोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुशी नहीं हूँ, मेरा भाई बंधु भी मुझसे जलते हैं ना, मुझे और यानी कि कोई प्रकार के सम्मान नहीं देते हैं। तो भाई जी, आपके लिए बस यहाँ भी कुछ लिखा हमारा, क्योंकि हमारा विषय रखने वाले हैं, हम सबके लिए विषय को बना करके और देते हैं, और ये विषय जो कि हमारे संत मुनियों को लिखा हुए है और वो हम सबके लिए खोज खोज करके रखते हैं, इस पे बताया गया है कि भाई केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है, केवल रक्त यानी कि खून के संबंध से अपना नहीं होता है, प्रेम सहयोग विश्वास श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कहते हैं फर्त्रावन को, प्रति आभार सुरक्षा सुहानुभूति और सम्मान ये सारे ऐसा भाव है जो परायों को भी अपना बनाते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जैसे कि आपने छेटवा को सुनाए यानी कि द सस्त मृत्यु तुल्य को और सुनाए, तो क्यों ना हमें सैफंद को भी सुना दे।
1: जी जरूर, सैफंदक है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी जीवन का आनंद से वंचित रह जाता है।
0: अरे ये तो बड़ा समस्या हुआ, ये तो बड़ा समस्या हुआ, क्योंकि जीवित रहते हुए लोग जो ऐसे सोचते हैं कि अरे आज के दिन तो बिता, कैसे बीतेगा कल का दिन, परसों क्या होगा, और ऐसे जीते हैं। ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा वृतांत तो हम ढेर जानते हैं। भाई राजेंद्र जी, क्यों ना हम इस पे अगर आप जो अवसर दे तो हम कुछ इसके बारे में कहना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि पैनल के पीछे तो आप बैठे हुए हैं और आप ही के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ राजेंद्र जी
1: जी
0: कि देव इंद्र ने एक अवसभा को रचा
1: जी।
0: सभा को रचा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, यानी कि सभी को नौता भेजा गया, और वहां पर सभी देवताओं जो कि देव्य रूप धारण कर करके
1: जी।
0: और वहां उपस्थित हो गए सभी पहाड़ों जो भी देवकीय रूप धारण कर करके और वहां उपस्थित हुए, सभी श्रेष्ठ नदियों भी देव्य रूप धारण के वहां उपस्थित हुए, सभी युगों भी वहां उपस्थित हुआ। सभी जब उपस्थित हो गया तो कौन आता है सबसे देर से वहां?
1: गणेश जी। कौन आता है बताइए संजय जी।
0: अब देखो राजेंद्र जी को भी नहीं पता था इस बात का। देखो वो वृतांत ऐसे यानी कि बताया गया कि वहां सबसे देर से कौन युग चल रहा है इस समय?
1: कलयुग।
0: और कलयुग आता है तो सबसे देर से आता है, और सबसे देर से वो और सभा में आकर के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। सभी देवताओं ने एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, कहने लगे कि समय इन्हीं का चल रहा है और आया भी तो देर से, और देर से आकर के जाकर के सबसे पाछे बैठे। तो सभी एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए जाते हैं कलयुग के पास, और कलयुग से ये प्रश्न रखते हैं कि भाई समय तो आपका चल रहा है और आप आए भी तो, और आकर के सबसे पीछे क्यों बैठे? तो कलयुग कहते कि मेरा तो दो बात है, मैं जो अपने यानी कि जो प्रेमी होते हैं हमारा, जो बड़ा आराम से सोते हैं, तो उन्हें चादर को ओढ़ाने चले जाते हूं। तो इस बात को देवताओं समझा नहीं, तो देवताओं के प्रश्न करने से कलयुग कहते हैं कि देखो जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए ना
1: जी,
0: तो उनका एकदम मंगलमय, पर जो सूर्य उदय से पहले उठ जाए तो उनका भी
1: मंगलमय,
0: पर जो सूर्य उदय के बाद में उठने को कोशिश करते हैं उनके तो मैं खुद चादर ओढ़ाने को चले जाते हूं ताकि वो आराम से सोए, ताकि हाँ सूर्य उदय हो जावे तो उठे। तो उसमें देवताओं ने प्रश्न रखे कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं तो जरूर हमारा चादर को प्राप्त करते हैं, पर हमारे चादर में क्या बसा हुआ है? रोग। तो यही रोग हमें और बाग आगे में जाकर के सताते हैं। रोग कहते बीमारी आती ना
1: जी।
0: तो राजेंद्र जी, हमें ऐसा जरूर इस बात पे सोचना चाहिए कि जो सदा रोगवश होते हैं तो कम से कम अपने आप में तो सुधार लावे। सूर्य अस्त ऐसा ना हो कि हो जाए तब आप उठो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, अपना कार्य को करो और तब आपका दिवस भी मंगलमय होंगे। भाई राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप रखने वाले हो?
1: हाँ, जैसा कि संजय जी आपने बताया सूर्योदय वाली बात, थोड़ा हम इस पे आधा मिनट लेंगे।
0: चलो एक मिनट ले लेंगे।
1: सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उसके बाद स्नान करके अपना जो पद्धति है पूजा पाठ की वो करें, जिसका जैसा है वो उसे करें, लेकिन इसके बाद थोड़ा योग
0: योग हाँ सही बात
1: योग आसन जरूर करें। और योग आसन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो योग आसन प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो योग आसन और प्राणायाम तो जरूर करें। ध्यान जब समय मिले जब कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय में योग और प्राणायाम करने से रोग मुक्त हो सकता है,
0: रोग मुक्त हो सकता है। तो जो सातवां कहावत है कि 14 और मृत्यु तुल्य में से सातवां जो है, जो आप अपने आप के बचाने के लिए आप जो कार्य करें, जो हमारे संतों ने संदेश दिए, तो आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। शांता जी भी कुछ कहने वाले थे राजेंद्र जी, तभी उसके बाद में फिर गीत को रखना।
2: जी, सुबह जाकर स्नान के बाद अपन कार्य जो है पूजा पाठ करने के बाद और सूर्य नमस्कार करें भी।
0: सूर्य नमस्कार
2: तो उसमें सब सब के सब योग उदलों में भी हो जाए, सब रकम के बवैखिंगों में हो जाए, अति सुंदर।
1: सूर्य नमस्कार कोई कर सके तो बहुत ही उत्तम, लेकिन जो लोग की उम्र थोड़ा ज़्यादा है या पहली बार कर रहे हैं योग, वो सम योग करें या सूक्ष्म योग करें धीरे धीरे।
2: सूक्ष्म योग क्या है?
1: सूक्ष्म योग मतलब छोटे छोटे योग जो हल्के रूप में है,
2: जी,
1: हाथ पैर

0: हम सब और आठवां के ओर आ चुके हैं। चलो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो बताया गया है और आठवां के ओर हम बढ़ चुके हैं, तो भाई राजेंद्र जी उसके बारे में तो कुछ बताइए।
1: जी, अभी जो आठवां के बारे में संजय जी ने जानना चाहा वो है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है, शरीर और बुद्धि दोनों असमंजस हो जाते हैं।
0: ओ, जब उतना लिफ्ट आ जाए, यानी कि जा अफंकलक हो गया लो ना।
1: हाँ, अक्षम, मतलब सक्षमता नहीं होती है, वो हो जाता है। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके।
0: अच्छा, बड़ा ये बात तो बड़ा ये थोड़ा आश्चर्य की बात हो जाए। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: इसके बारे में मेरी सासू जी, सासू माँ हरदम ये बात कहती थी, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। वो हर शायद ये बात ये कहती थी कि ये जैसे करी वे वैसे ही पाई। तो बहुत अच्छा और ज्ञान भरी के बाद भी है।

0: जी बहुत बड़का संदेश था इसमें,
1: एक
0: बहुत
1: संदेश
0: है।
1: जो यहाँ मेरा व्हाट्सएप बर्क पे बबली जी भेजे हैं, इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। ये संदेश जो कि बबली जी हमें भेजे, और भाई गहार लक्ष्मी प्रसाद जो आम्स्टरडाम से ये कार्यक्रम को सुनते हुए बोले कि भाई ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो भाई धन्यवाद आपका और सुनते रहना, बस यही कहना चाहूंगा। हम भाई राजेंद्र जी,
2: जी
1: आठवां के बाद तो नौ जरूर होना चाहिए।
2: हाँ नौ तो जरूर होना चाहिए, नौवा है सतत क्रोधी।
1: सतत क्रोधी
2: जी, 24 घंटा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होती है।
1: यानी कि जो व्यक्ति 24 घंटा क्रोध में रहता है और हर एक छोटा छोटा बात पे और बस अपना गुस्सा को दिखाने लगते हैं, तो ये भी 14 और मृत्यु तुल्यों में भी वर्णन किया गया है। दोस्तों हम जो ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में और बातचीत कर रहे हैं, और हमारे भाई राजेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित है, हम सबके अपना संदेश जो दे रहे हैं, और शांता जी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो सतत क्रोधी,
0: ऐसा व्यक्ति से तो दूर रहना अच्छा है।
1: आप कभी क्रोध नहीं होते?
0: मेरा स्वभाव नहीं क्रोध होने के लिए।
2: लेकिन कभी किसी के कारण क्रोध करना पड़े तो आप क्या करते हैं?
0: मैं क्रोध नहीं करती हूँ, मैं शांत से
2: तो
0: नहीं करती हूँ, नहीं आता क्रोध मुझे, नहीं आता तो मैं शांत से उसको देख कर समझ बूझ कर अपने आप में आ जाती हूँ।
2: इसलिए कि आपका नाम शांता है तो इसलिए आप शांत हो सकेला। लेकिन अभी अगर कभी किसी से क्रोध करना भी पड़े तो बाहर से करना, अंदर से नहीं
1: ना?
2: अच्छा। बाहर रूप से।
1: चलो दसवां और रूप बता दो भाई राजेंद्र जी की। दसवां रूप जो
2: है अदखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने की धन प्राप्त करना चाहिए। मेहनत और कमाई का जो धन होता है वही प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है।
1: राजेंद्र जी,
2: जी
1: यानी कि इस बात से आप ये कहना चाहेंगे कि जो पाप व्यक्ति पाप कर्मों से और कमा करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं तो परिवार वाला भी उसमें दोषी बन जाते हैं।
2: जी
1: तो ये तो भी ठीक चीज नहीं है। दोस्तों ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम हम सब चला रहे हैं और आज का और यानी कि विषय 14 मृत्यु तुल्य है। 14 मृत्यु तुल्य और इसमें से कितने हम सब उसमें सुन करके और उसमें अपने आप को देखते हैं कि 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है। क्योंकि कहावत है कि ये जो जिंदगी ये जीना कितना सुंदर रूप है। हम जब ये जीने का ये जीवन के जीने का तरीका सीख ले तो हम सबके जीवन कितना आराम ही आराम होगा। हमें जो अभी आपने और सुनाए जो कि दसवां था ना राजेंद्र जी?
2: जी दसवां।
1: तो दसवां में से अब हमें 11वां के ओर छलांग लगाना है।
2: जी जरूर। 11वां है तनु पोषक। तनु पोषक यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो तो ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हो कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले वे मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है।
1: यानी कि जो लोग खाली सिर्फ अपने के कबल है, ओके शांता जी,
0: एक हो स्त्रीलिंग,
1: हाँ, जो स्वार्थी होते हैं, तो वो भी मृत्यु का समान होते हैं। तो भाई हमें इस बात से, इस संदेश से जरूर कुछ सोचे कि क्या हम, हमारे में कितना स्वार्थी तथा कितना जो एकोविश्म है उस पे और कुछ प्रकार से प्रभाव हो सके, ताकि हम उससे भी और यानी कि पहचाने अपने आप में। क्योंकि ऐसा हुआ ना राजेंद्र जी, एक मेरा मित्र था और वो कह रहे थे कि हमसे एक वृतांत को सुना रहे थे, तो वृतांत जो था ऐसा हुआ कि उसका दद्दू, हम लोग कहते आजाना, तो उन्होंने कहा कि मेरा दद्दू सभी के कमरे में एक दर्पण लगाए हुए थे, पर सभी के कमरे में एक छोटा छोटा सा दर्पण, यानी कि दर्पण कहते हैं शीशा,
2: आईना।
1: तो सभी के कमरे में छोटे छोटे था और वो दर्पण, पर उन्होंने अपने कमरे में बड़ा सा और दर्पण रखे थे, यानी कि जिसे अपना पूरा शरीर को और देख सकते थे। वो जो वृतांत था कि उन्होंने कहा कि अपने कमरे में बड़ा सा दर्पण रखे, और ये बड़ा आसान होता है किसी और के ऊपर उंगली उठाना, पर कभी अपने आप से ये प्रश्न किए हैं कि क्या जो उंगली उठाए क्या सारा गलती उसी के रहा कि या कुछ गलती मेरा था। तो कहने के तात्पर्य ये है कि जो अपने कमरे में जो उनका दद्दू ने बड़ा सा दर्पण रखे थे, तो वो रोज आकर सबसे पहले वो दर्पण के सामने खड़ा होकर आंख में आंख डाल करके ये प्रश्न किया करते थे कि जो आज किया क्या सब ठीक हुआ, कभी गलती से हमसे कोई कार्य ना हो गया कि ताकि औरों को दुख पहुंचे हुए। शांता जी, इसके बारे में आपका कुछ कहना है?
0: जी हाँ, यही कि कुछ कहने से पहले सोच लो कि क्या कहना है, कि ऐसे ना हो कि ऐसे कुछ शब्द निकल जाए और बाद में पछताना पड़े, तो बहुत दुख होगा।
1: ऐसा भी होता है कि कभी कभी गुस्सा में लोग ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं, तो ना कि सिर्फ दुख पहुंचता है, पर कभी रास्ता ही लौटने का भी गुप्त हो जाता है। तो भाई राजेंद्र जी, आगे बारहवा की ओर हम बढ़े।
2: बारहवा की ओर बढ़ते हैं। बारहवा है संजय जी, निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। निंदा करना मतलब पीठ पीछे बुराई करना किसी की।
1: अरे राजेंद्र जी, निंदक कौन नहीं आजकल? जिसके टेलीफोन में व्हाट्सएप है तो वो निंदक नहीं है? जहां कोई के बरिख और यानी कि कोई संदेश सुन लेते हैं
2: जी,
1: तो बस बुराई जो होता है तो एक लोग के पास नहीं भेजते हैं, लाखों के पास,
2: तो मरे हुए समान है। इसलिए हमको निंदक नहीं भेजना चाहिए, अच्छा ज्ञान भरी चीज भेजनी चाहिए, निंदा वाली नहीं। जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है, जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बुरा बात है। अब जो लोग बेचारन सोचे कि कोई की निंद्रा सुनी सब व्हाट्सएप से एकरे, अरे दुई गो के तीन गो के औरों के पास खूब भेजे, तो वो सब भी इसमें शामिल हो गए। भाई जोर से नहीं कहूंगा, कभी काल के हम भी तो कुछ ना कुछ भेज देते आगे, पर इस बात को सुनकर अपना गलती और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए और तैयार करते हैं। आप उसमें से कुछ ना कुछ संदेश जो हम सब के लिए खोज कर रखा जाता है, उसमें से हम सब अपने आप तथा औरों के साथ बांटते हैं और कुछ न कुछ संदेश उससे हम अपने लिए कोई प्रकार से लाभदायक हो। हमारे साथ जो देने वाले हैं भाई राजेंद्र जी, वो तो तैयार हो गया है 13वां और मृत्यु तुल्य के ओर बढ़ने के लिए। पर शांता जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे शांता जी आप?
0: जी जी कहूंगा, ये समय की बात है ना, समय तेजी से समय कहते हैं। द तेत इज ग्रेटेस मार अनबतालबार, तेत ये कान हेट नीत एगनन मार वेल गब्रुकन, तेत ये कान हेट नीत बवारन मार वेल गुड बस्टेदन, तेत सोद्रा हेट फोरबै इज कोम्त हेट नोइट मेर टेरुग। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों, आप सुन रहे हैं कि वक्त कितना बलवान है, कितना महान है, वक्त के कदर करना चाहिए।
1: भाई राजेंद्र जी आगे
2: आगे है 13वां है परमात्म विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही माना जाता है।
1: जो भगवान में नहीं विश्वास करे
2: जी,
1: जो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है
2: जी,
1: तो यही तो है मुश्किल। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ हम आए हैं तो हम ही सब कुछ है। तो भाई इसमें भी वृतांत बताया गया है कि 14 मृत्यु तुल्य में उसके बारे में भी। भाई राजेंद्र जी आगे
2: 14वां
1: चतुर्दशी, हाँ उसके बारे में बताइए।
2: हाँ जो 14वां है वो है श्रुति। श्रुति यानी संत विरोधी,
1: जो संतों से विरोध करते हैं।
2: हाँ जो संत ग्रंथ, संतों से, ग्रंथों से, पुराणों से इनका सब विरोध करते हैं, वह भी मृत समान ही होते हैं। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं 120 की स्पीड पे और बीच में अचानक डिवाइडर आ जाए, वो ब्रेकर आ जाए तो एकदम रोकना पड़ता है, तो ऐसे ही ये लोगों के अनुसार ब्रेकर का काम करते हैं।
1: यानी कि जो हमारे संतों और ग्रंथों के यानी कि निंदक होते हैं ना
2: जी,
1: और उनके उन्हें मानते भी नहीं, तो
2: मानते
1: ये
2: भी नहीं और मानने भी नहीं देते दूसरों को,
1: यानी कि उसपे अपना वाला सुनाने के लिए और औरों को मानने से रोकते हैं
2: जी।
1: तो दोस्तों ये था 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में जो हम सब के साथ भाई राजेंद्र जी और यानी कि अपने संदेश को बांटे। हम सब एक सुंदर सा नगमा के ओर बढ़ेंगे, सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे।
2: सुंदर सा जो गीत है उसके बोल हैं

0: राजेंद्र जी अति सुंदर गीत को रखे और जिससे हमारे भाई रूपचंद जी और बोल रहे थे कि भाई क्या कह रहे थे राजेंद्र जी।
1: हाँ, रूपचंद जी कह रहे थे कि बहुत मोए लगा गाना हमको, जो 14 प्रकार की मृत्यु है वो बहुत विशाल लगा।
0: तो यानी कि भाई रूपचंद जी समझ
1: गया, बहुत गंभीर विषय रहा बता रहे थे।
0: तो भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि जब अपना दिन शुरू करते हैं, जब अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी जीभ में 3 शब्द रखे, कोशिश, सच, विश्वास। यानी कि ये 3 शब्दों अपने जीभ से रखे कि आज मैं कोशिश करने वाला हूं, आज मैं सच कहने वाला हूं, आज विश्वास के लिए। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, और विश्वास भगवान में रखे, तब सफलता आपके पैरों को पर
1: चूमेगी।
0: इसी बात से भाई राजेंद्र जी की हम सब 14 प्रकार के मृत्यु हम सब रखे कि 14 प्रकार के मृत्यु जो हमारे संतों मुनियों ने हम सब के लिए विचार करके और रखे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत हुआ। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई कहीं और बैठे होंगे, कोई अपने घर से बैठे हैं, कोई कार में सुन रहे हैं, कोई अपने मोबाइल से सुन रहे हैं। तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो हर समय आपके लिए 2400 घंटा आपके साथ रहते हैं। इसमें जरूर ये कहना चाहूँगा कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है। जब कोई काम कोई कार्य करे तो ये मत सोचना कि हाँ कोई प्रकार से चित्रगुप्त जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य साक्षी होते हैं, चंद्रमा साक्षी होते हैं, अंधेरा भी साक्षी होता है
1: जी।
0: तो हम ऐसा कार्य करें कि हमें उसे डरना नहीं चाहिए। और ये भी कहावत है कि और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। इसी दोनों अंतर को जब हम समझ जाए तो हमारे जो ज्योति का प्रकाश, जिसका हम सब ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा से भी प्रकाश हो जाए। भाई राजेंद्र जी, आप कौन सा गीत को रखे हुए हैं?
1: जो गीत रखे हैं वो है बच्चों का,
0: पर अभी उस ओर बढ़ना नहीं
1: जी,
0: क्योंकि शांता जी तैयार हो गया है कुछ कहने को।
1: जरूर जरूर शांता जी कुछ कहेंगे।
2: हाँ, यही कहूँगा, ये जो संजय जी ने कहा ना कि कोई देख रहा है, कुछ भी करो कोई भी देख रहा है, तो सबसे पहले कोई देख रहा है वो अपना आत्मा है जो देख रहा है, और उस आत्मा भी धिक्कारता है कि अगर तू कुछ बुरा काम कार्य करेगा तो वो भी धिक्कारेगा, और जो कर भी लोगे ना तो वो आपका आत्मा में शांति भी नहीं आएगा, वो हर बार आपको कोसते रहेगा, सोचते रहेगा कि क्यों किया।
0: तो भाई राजेंद्र जी
1: जी,
0: ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है, हमारे बच्चों के लिए आपने क्या रखे?
1: बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रखे हैं, बोलो राम अजराम।
3: दादी दादी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जा तो मुझे डर लगता है।
4: स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है।
3: नहीं, मुझे बहुत डर लगता है।
4: इसमें डरने की क्या बात है बेटा, अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना।
3: मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है।
4: अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो आएगा।

0: जन्मदिन की बधाई हो मास्टर जी।
1: पांडे, मास्टर जी ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है।
2: ये बेर कहाँ से लाई है? तो
0: मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया है।

0: बोले राम आजा राम, ये गीत हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पेश की, यही सोचकर कि वो सभी को पसंद आए होंगे।
1: तो चलो ये वृतांत को सुन लेते कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए लेकर के यहाँ उपस्थित है। आज हमारे कार्यक्रम में भाई राजेंद्र जी, जो कि हमारे सभी सुनने वालों जिसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गीत को आप रखेंगे, अब पता नहीं आज रख रहे हैं आप या नहीं रख रहे, पर
2: जी जरूर रखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा जो हमने अभी इससे पहले जो गीत सुना बच्चों का,
1: हाँ जी,
2: वो बहुत ही मधुर वाणी में रहा, बोले राम राजा राम बोले राम, बच्चों ने बहुत ही मधुर वाणी से गाना सुनाया और अपनी दादी माँ को अपने मास्टर जी को, और इससे हमको ये संदेश मिलता है कि बच्चे मन के सच्चे, जैसे बच्चे और भगवान एक ही रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई दोष नहीं होता है। तो अब हम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले, कुछ लोगों ने संदेश भेजा है कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनमें से कुछ लोग हैं रूपचंद जी, शिव किशन जी, पंडित गंगाराम जी, शांता जी, बैजंती माला जी, अंचला जी और देवी प्रसाद जी। तो अब हम एक सुरनाम हमारा प्यारा देश, बहुत ही अच्छा गाना है और इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
1: राजेंद्र जी मैं देख रहा हूँ यहाँ शांता जी बड़ा बेचैनी से और मिक्रोफोन की ओर देख रहा है, क्योंकि सूरीनाम से कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं लोग।
0: 18,000 किलोमीटर सूरीनाम से भी वहाँ पे शर्मिला खेमाई जो है वो भी
1: आपके कार्यक्रम को सुन रहे, तो शर्मिला जी को भी बहुत से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसी प्रकार से कार्यक्रम को सुनते रहना, क्योंकि हमारे ये फाहोन हिंदुस्तानी जो धूप है या वर्षा, गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, फाहोन हिंदुस्तानी है आपके
2: साथ।
1: तो हम सब एक भाई राजेंद्र जी
2: जी
1: चला दो
2: जी।

आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया होगा। आपके सेवक और सेविका संजय जी, राजेंद्र जी और शांता जी, धन्यवाद सुनने के लिए। और शुभ रात्रि आप सबको, अपना ख्याल रखना।

लागी छूटे ना अब तो सनम, जब हम इस धुन को सुन रहे हैं दोस्तों सुनने वालों, तो हम ये बात को जान गए कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाला जो यानी कि हमारे तेमा को लिखते हैं देते हैं रत्ना जी, हमारे कार्यक्रम के यानी कि कैप्टन जो पनेल के पाछे है राजेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे स्टूडियो में जो भाई राजेश बदलू जी जो हम सबको सहयोग देते हैं, और शांता खेमाई जो अपने ओर से हमें सहयोग दिए है। हाँ, मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि अगले हफ्ता आप सुनते रहना। नमस्कार।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।